0: चकरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरक टम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगडदुम चकडदुम चिकिचकचो
1: Yeah.

माँ दुर्गा आदि शक्ति है, निर्बल निर्धन मानव का बल है माँ दुर्गा। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के जितने नाम और रूप उल्लेखित हैं, सभी नाम और रूप सर्वथा और सर्व स्थानों पर पूजित हैं। माता दुर्गा देवताओं की शक्ति में है, भक्तों की भक्ति में है।

0: 106.1 FM. This is us. The vibe and energy of Sangeet 106.1 FM. This is us.
1: लड़के वाले आज आ रहे हैं और हम लड़कियां दिखाएंगी कि हम किसी से भी कम नहीं है. Music.

रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। तो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: मत मान दी तू
1: ना जुदा हूँ
0: मिस्टर नागियाल भाई
1: कभी खुशी
0: शी हर्ट एनी मोस शी डू यू ऑल कैन आई टेक यू स्टिल लव शी एंड यू गो ऑलवेज लव शी भाई दिनू भाई